स्वाभाविक है। कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब लोग खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने कितनी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया।

0: बजाएगा तू प्यारे हनुमान चुटकी
1: राम नाम रख और खटपट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट तेरे

श्यापति रामचंद्र की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की स्थान खड़ा हो जाए सब कोई. As I welcome each and every one of you to the second night of Yajna, Gita Yajna. Hari Om. As we will have the RT at this time.

भगवान श्री कृष्ण सजन गीता रुद्र आयम रुद्र आयम भगवान शिव रसोल प्रे तो श्री राम